जैसे परी ये सुबह मस्त भरी यूं हंसी जैसे परी किस्मत को शायद याद आ गए हम किस्मत को शायद।